दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलखपुर।

0: राधे भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरुदेवा की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: You do it, Puspa. One bhajan. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

बोले श्री प्रणाम भगवान की जय। सदेवा पुरी समदेवा की जय। श्री हिंदू धाम समर मन वन सर गुरुदेव की जय। विश्व गुरु मां मनलेश्वर परमांश स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

की बोले श्री प्रणाम भगवान की जय श्री देवपुरी समादेव की जय श्री रेवत सिंह जी की जय।

भगवान की सच्चिदानंद भगवान की। सो इन द स्पिरिचुअल पाथ फर्स्ट इट इज सेड इन उपनिषद फर्स्ट मातृ देवो भव फर्स्ट मदर गॉड इज द मदर एंड देयरफॉर सॉरी लक्ष्मी नारायण यू डोंट से नारायण लक्ष्मी इट डजंट ऑल्सो इन सिंगिंग यू कैन नॉट कंपोन सो लक्ष्मी नारायण सीताराम राधेश्याम गौरी शंकर सो फर्स्ट इज द फीमेल सो डोंट थिंक दैट ओनली द ब्रह्म विष्णु इज द हाइएस्ट नो नो लक्ष्मी इज मोर देन दैट आई हैव लक्ष्मी गुनाइस्ट स्टोरी डू यू वॉन्ट टू नो द लक्ष्मी स्टोरी शुड आई टेल यू Oh, he will say, Swamiji, still one seed. I have to talk about that one seed which is grown and have two leaves. But all, look how many branches came from this one seed. One day, Bhagavan Vishnu and Lakshmiji and 1,000-headed snake coiled in the ocean of the nectar, milky ocean. Bhagavan Vishnu is resting and Lakshmi is sitting near and doing seva. So Bhagavan Vishnu said to Lakshmi, this great businessman. I didn't cook means today now the Nagin boy, okay? So Bhagavan Vishnu tells, this is my great bhakta. Lakshmiji said, what did you say, my lord? You see, my concentration

0: त्रिगुण फांस लिया कर डोले द रोप हैव इन हैंड टू हैंग यू अप बट टिल दैट सी हैव वेरी स्वीट लैंग्वेज वेरी स्वीट वेरी हम्बल हाउ टू कैच यू एंड देन यू आर होल्डिंग लाइक दिस स्नेक इन योर हैंड्स सो दिस माया दिस संसारास देयरफॉर इट इज सेड पतन और उथन दो बोथ हैज बीन सॉन सो भगवान विष्णु सेठ लक्ष्मी देवी गॉडेस लेट्स गो बैक टू अवर वैकुंठा दैट इज मच बेटर सम टाइम टू टाइम नो नारदा कम्स दैट्स ऑल एंड सो केम देयर एंड दे वेंट सो बट बोथ One seed. So the roots are in one. But what is proud came out, one is this and that. So what is that one? One is called Sangha. Sangha means the company. Now, which kind of company you have? Negative way or spiritual positive way? Now, this is called only one word, Sangha. Now, in the one word, one letter, Sangha. Now, before Sangha, if you write Sat, what becomes? Satsang. And if instead of the Sat, you write Ku, what happens? Kusanga, bad societies. So root is there, but how now the branches will develop this side or that side? So in the Kali Yuga is a very, very hard, difficult to get good Sangha. There's a lot of sweet words, there are a lot of tricks, but at end there will be nothing. So, this one bhajan was Mahaprabhuji's. Then I will not translate all, otherwise morning I have to serve you breakfast here.
1: Yeah, you miss your plane.
0: So therefore,

सत्संग ओ सज्जन वाली लागे ओ सदाई सत्संग. ओ माई डियर वन, ओ माई फ्रेंड्स, आई लव सत्संग. श्रुति और स्मृति गावे. श्रुति वाट इज स्पोकन, स्मृति वाट इज इन मेमोरी. दिस इज फ्रॉम वेदास. श्रुति स्मृति, श्रोता श्रोत्रिय,

श्री अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री सुदेव पुरुषा महादेव की, हिमालयन अवतार श्री अलक पुरुषा महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट परम श्री स्वामी माधवानंद पुरी जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परम श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र उस दिव्य महान परंपरा ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा के सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वंदन करते हुए मंचस्थ महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और इस परम पवित्र परम दिव्य आयोजन में जिसके निमित्त आयोजन है ऐसे हम सब के आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी के उस दिव्य कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का दिव्य लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग सभा में, इस सत्संग त्रिवेणी में, इस सत्संग की बहती गंगा में विराजमान समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन जो अपने अपने घर गांव परिवार को छोड़ करके इस अमूल्य दुर्लभ सत्संग का लाभ लेने आए हैं, घर भी बैठ सकते थे लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम भी सत्संग श्रवण करें, तो परमात्मा की परम कृपा से यह ऐसा अवसर आता है। कहते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा, भाग

भाई, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पश्चात ऐसा समय आता है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, युग युगांतर के पुण्य एक साथ आते हैं, तब जाकर के हमें यह सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसे परम पवित्र उस दिव्य धाम में, जो समस्त वेदों का मूल, शास्त्रों का मूल, उपनिषदों का मूल ओमकार है, उस ओमकार की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो तो इसकी महिमा और अनंत गुना बढ़ जाती है। तो आप और हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ने हमको जो यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना, सो जाना, परिवार बढ़ाना, क्या यही उद्देश्य? नहीं, ये तो ठीक है। संसार में जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से पशु भी रहते हैं। पशुओं का भी परिवार होता है, वह भी परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अरे देखो, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली मौसी अपने बच्चे को सात घरों में ले जाती है, कितना पालन करती है, घर नहीं होता है, तो वो भी बच्चों का पालन करती है। और हम यदि अहंकार करने लग जाए कि बच्चों को पाल पोस करके हमने कोई बड़ा काम कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, हम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि संत चरणों में आकर के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भक्ति, उपासना, साधना, घर परिवार छोड़ करके नहीं, परंतु घर परिवार में रह करके ही करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष जिनकी हम आज 62वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम सबका जीवन भी उस दिव्य परम ज्योति की तरह उज्ज्वल हो, प्रदीपित हो, और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश आए गुरुदेव की कृपा से, कि हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाए। देखो, गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। बिना गुरु कृपा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। एक अज्ञानी मनुष्य था, वह न तो महात्मा को मानता था, न भगवान को मानता था, न संत को मानता था, किसी को नहीं मानता था। एक बार संत महाराज उस गांव में पधारे, और जा कर के संत जब आते हैं क्या करते हैं? संत आ कर के भगवान से मिलाने का ही कार्य करते हैं। संत हमें परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है उस मार्ग को दिखलाते हैं। तो संत जी ने उस अज्ञानी व्यक्ति से जा कर के पूछा कि भैया, मैं तुमको कैसा दिखता हूँ? अब उसे न संतों से मतलब था, ना किसी से मतलब था। उसने कहा, महाराज आप तो हमारे जो गांव में बूढ़ा पाड़ा है ना, वैसे दिखते हो बिल्कुल। संत ने कहा, अभी इसका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, बिल्कुल मलिन है। संत ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा दिखता हूँ ठीक है, लेकिन तुम यह करो, मैं जो तुमको मंत्र दे रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए दे रहा हूँ, यह नाम स्मरण करते रहना। फिर संत जी एक साल बाद आए और पूछा, भाई अब कैसा दिखता हूँ? बोले, महाराज अब थोड़े मनुष्य जैसे दिखने लगे हो। संत जी ने कहा, ठीक है, जो मंत्र दिया है उसको निरंतर जप करते रहना, छोड़ना मत एक दिन भी, मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आता हूँ। कुछ समय बाद संत जी महाराज गंगा, हरिद्वार, काशी स्नान इत्यादि करके आए, और फिर उसको पूछा कि भाई अब कैसा दिखता हूँ? महाराज अब आप देवता जैसे दिखते हो। महाराज ने कहा, अब कुछ और जो है इसको अंतकरण पवित्र हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार और गए और जाकर के फिर वापस आए, तब उस मनुष्य ने आकर के क्या किया, सीधा दौड़ करके आया जैसे गुरुजी आए, और आकर के दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु आज तो साक्षात मुझे भगवान ही दिखते हो। तो महाराज वो अज्ञानी मनुष्य से ज्ञान कराने वाले कौन हैं? परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हैं, ताकि हम ज्ञान के प्रकाश में आकर के आलोकित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। देखो, सुखिया भाई बड़ा सुंदर भजन गा रही थी, और भजन गाने के बाद में दो सुंदर बातें कही इन्होंने। कहा, जो दो अवतार होते हैं, भगवान आते हैं ना संसार में, तो किस रूप में आते हैं?
एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। तो नित्य अवतार अर्थात हमेशा भगवान धरती पर रहते ही है। तो अब हमें क्यों नहीं दिखते महाराज रहते हैं, तो क्योंकि हमारी वह दृष्टि नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि तम, जो अर्जुन है अर्जुन उसको भी भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं। तो दिव्य चक्षु जब देते हैं तब भगवान का विराट रूप दिखता है। तो एक तो नित्य अवतार के रूप में, दूसरे निमित्त अवतार के रूप में। तो निमित्त कब आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। तो उस समय भगवान किसी न किसी कारण से अवतार लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं, वो हो गया निमित्त अवतार। और नित्य अवतार का महाराज, जैसे हमारी परंपरा के दिव्य महान ऋषि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक धर्माचार्य श्री दीपनारायण महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुषों के रूप में भगवान नित्य इस धरती पर निवास करते हैं। और आज भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु जी के रूप में हमारे मध्य में साक्षात भगवान ही विराजमान है। बस हमको देखने की कमी है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी

हमारा विश्वास कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। तो दो रूप में आते हैं, तो उसी रूप में संत जो भगवान के नित्य अवतार होते हैं। और महाराज संत भगवंत अंतर नहीं निरंतर, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल्पवृक्ष देखा आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ कल्पवृक्ष लगा हुआ है ना। तो एक व्यक्ति था अपना, उसके साथ में पुराने समय की बात है, सामान लेकर के जा रहा था। तो इसकी सवारी थी, घोड़ा था, और घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ था, लेकर के जा रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत थक गया महाराज, थक गया तो उसने सोचा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए गया और सोचने लगा, थक गया हूँ, थकने के साथ साथ भूख भी लगी है, यदि बढ़िया से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए तो महाराज क्या ही बात है। अब कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, जैसी कल्पना की तुरंत कल्पना साकार हो गई और उसके सामने पंच पकवान आकर के रख दिए गए और तुरंत प्रसन्न हो गया और भोजन पा लिया। भोजन पाया तो महाराज अब भोजन के बाद क्या होता है, निद्रा आती कि नहीं आती। महाराज भोजन कर लिया, अब सोना है, आराम करना है। अब उसका मन हुआ आराम तो कर ले, लेकिन आराम करने के लिए कंकड़ है नीचे, कोई बढ़िया से खाट मिल जाए, हैं मखमल का गद्दा वगैरह, तो आनंद आ जाए। जैसी कल्पना की तुरंत बढ़िया जो है बेड आ गया, उस पर मखमल का बिस्तर आ गया और सो गया। सोने के पश्चात नींद आ ही रही थी, क्या थोड़ा पैर दर्द हो रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला आ जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। और जैसी कल्पना की सुंदर अप्सराएं आ गई पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, थोड़ी देर बाद वापस नींद खुली, कहा महाराज अचानक इस जंगल में मैं सो रहा हूँ, अकेला हूँ, सामान रखा हुआ है, शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या होगा। जैसी कल्पना की महाराज शेर आया और उसने शिकार कर लिया। बोले दीपनारायण भगवान ने की। तो महाराज परम पिता परमात्मा के रूप में जो सद्गुरुदेव भगवान आते हैं वे भी कल्पवृक्ष के समान ही है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। यदि हमको जो धन संपत्ति चाहिए तो सद्गुरुदेव भगवान क्या देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। सामने उदाहरण देखो बैठे हैं ये भाई साहब हैं, देखो इनके जीवन की घटना की हमको आश्चर्य होता है। लोग भी आश्चर्य करते हैं और लोग विश्वास भी जल्दी नहीं करते, लेकिन आज आपके सामने प्रमाण है। एक नहीं अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो साक्षात जिन्होंने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा की, आस्था रखी, विश्वास रखा, और जो जो कल्पनाएं की, जो जो मनोरथ किया, वह का वह मनोरथ पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। तो ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है, इसलिए हमको समझने की कमी है। ऐसे संत महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है। देखो एक बात बताएं आपको, संतों के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए, भगवान के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं महाराज, घर में रहते हैं ना, तो आज मंदिर जाएंगे या गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं, एक हाथ लंबी, क्या क्या मांगना आज, और वो लिस्ट ले जा करके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये सारी लिस्ट आपके सामने है। करते हैं कि नहीं करते। लेकिन भाई उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी को क्या पता नहीं आपको क्या आवश्यकता है, बताओ, पता है ना। तो जब संत के पास में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो सदैव यही मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि सदकार्य में लगे, मेरे जीवन में सत्संग आए, मेरा मन प्रभु आप में ही लगे। यदि यही मांगोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही है। जो केवट था, जानते हो केवट कौन था, भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे उसमें नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए भगवान ने कहा केवट नैया लेकर के आओ। तो केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा प्रभु। बोले क्यों, क्या दिक्कत है। बोले प्रभु मेरी एक ही नाव है, इस नाव को आपने स्पर्श कर दिया, आपका चरण रज लग गया, तो महाराज ये नाव स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन जाएगी तो मेरे जो क्या दिनचर्या, जो रोजमर्रे की जो क्या जीवन चलाना, गृहस्थी चलानी है, वो कैसे चलेगी, एक ही नाव है। और दूसरी बात, एक स्त्री है ही मेरे घर में, मेरी पत्नी है ही है, और दूसरी और स्त्री होगी तो पालना मुश्किल हो जाएगा, परिवार को कैसे पालूंगा।
भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं, बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपकी लीला,

आपने पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई, ये तो लकड़ी और कमजोर है। तो बाद में कहा कैसे लाओगे, प्रभु आपका यदि चरण रज मुझे दे दें आप धोने के लिए तब जा करके मैं नाव लाऊंगा। और भगवान ने बात मानी, चरण धोया, नाव में बैठे, पार गए। पार जैसे गए तो अब जब जाते हैं तो महाराज कुछ देना ही होता है आपको, कोई उस पार ले जा रहा है तो नाव वाले को कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कुछ दिया जाए, भगवान के पास कुछ है नहीं। भगवान सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सच्ची पत्नी वही है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। पति की क्या परिस्थिति है, सुख में भी तो भी साथ रहे, दुख में भी तो भी साथ रहे। तो माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए, अपनी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को उतार करके दे दिया, स्वामी यही इस नाविक को उतराई दे दीजिए, आने जाने का किराया हो जाएगा। जैसे ही भगवान देने लगे तब केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब

हरि ओम। सभी भक्तों ने प्रसाद पाया भाई? सबने प्रसाद पा लिया? हाँ, तो प्रसाद ही बनाने की जो सेवा में लगे हुए हैं अपने गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री पृथ्वी सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, वे हमेशा जो है भगवान की कृपा से सत्संग का लाभ तो कम लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो है क्या कहते हैं ना, भोजनामृत का, प्रसादी का लाभ देते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी भक्तगण आए हैं आप लोग प्रसाद लेकर के, आज की रात्रि तो कम से कम जब तक शरीर साथ दे तब तक क्या करिए, सत्संग का श्रवण करिए। हमेशा हमेशा तो मिलने वाला है नहीं, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से जो मिला है, जो मिला है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, सत्संग में। सत्संग का तात्पर्य क्या है, सत्संग, सत अर्थात सत्य, जो सत्य है उस सत्य का संग करना, उस सत्य के साथ रहना, उस सत्य के साथ जीना, उस सत्य के साथ चलना, यही क्या कहलाता है, सत्संग। तो सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, आप सत्य मानते हो ना कोई चीज़ को, तो किसे कहते हैं सत्य? सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक समान रहती है, जो कभी बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सत्य। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और वो बात बदल गई कि पहले तो आपने ऐसा कहा था अब ऐसा हुआ नहीं, तो वो सत्य कहलाएगा? नहीं, जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में एक समान कौन रहता है, क्या आप, हम, जो सब दिख रहा है, झूपा है, ये शरीर है, ये मंदिर है, ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, लेकिन यह वास्तविक सत्य क्या है? देखो, आप स्वप्न देखते हैं, हाँ देखते हैं स्वप्न, तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हाथी घोड़ा आया, बैठ करके गए बढ़िया से, सब देवता सामने आए, और जैसे ही नींद खुली तो स्वप्न टूट गया, तो फिर क्या कहते हैं, ये तो सत्य नहीं, सपना था। उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, सपना है। कौन

भगवान शिव अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, भगवान का भजन भगवान ही। महाराज सपना कैसे हैं, कैसे सपना बताओ, सामने तो दिख रहा महाराज सपना, वो होता जो हो दिखता पर होता नहीं है, पर यहाँ तो दिख भी रहा, हो भी रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ, सामने हम बोल रहे तो सत्य दिख रहे कि नहीं दिख रहे। लेकिन सपना कैसे हैं कि जैसे ही यह समय बीत जाएगा, कौन सा समय, जो समय चल रहा है वर्तमान समय में, तो मैंने कहा तीनों कालों में, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन काल होते हैं, तीन काल की सत्ता होती है। तो क्या यह तीनों कालों में है, क्या 100 वर्ष पहले आश्रम था, 100 वर्ष पहले हम लोग थे क्या यहाँ बताओ, 100 वर्ष पहले थे इस शरीर में, नहीं थे, तो भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में है, और आगे भी पता नहीं 100 वर्ष बाद रहोगे क्या। जो तीनों कालों में नहीं है वो क्या है, असत्य है, और जो तीनों कालों में भगवान पहले भी था, अभी भी भगवान है और आगे भी रहेगा। कहाँ भगवान, परमात्मा के जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त हैं। ईसा आवाश्यमिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, परमपिता परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, किसमें, संपूर्ण जगत में। एक प्रश्न भी उत्तर भी है, क्या है बोलो, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, और उत्तर भी यही है, कण कण में भगवान है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को सदैव स्मरण करते रहो, सदैव याद करते रहो, सदैव भजन करते रहो, तो महाराज बेड़ा पार हैं, नहीं तो इधर से उधर आर पार तो होना ही है। बोले दीपनारायण भगवान की। अब अपनी मधुर वाणी से पप्पू जी गर्ग आपको भजन सुनाएंगे, हमारे गुरु भक्त अशोक जी आप भी इधर आ जाएं, गणपत जी आप भी, और बैठ करके दिव्य प्रकार से भजनों का आनंद हम सबको प्राप्त कराएं।

हरि ओम। माता जी लोग, आप लोग थोड़ा विराम करो, फिर बाद में सुबह फिर गाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? अभी भजन मंडली आई हुई हैं, इनको भी थोड़ा अवसर दे देते तो अभी अशोक जी चौहान अपने सुमधुर कंठ से बाबजी के भजनों के द्वारा हम सबको आनंद प्राप्त कराएंगे। अशोक जी चौहान। आप हमारे गुरुकुल में संगीत के अध्यापक भी रहे हैं और बाबजी की कृपा से, माँ प्रभु जी की कृपा से आपने स्टेट लेवल तक भी संगीत के माध्यम से अपने प्रतिभा को जो है राजस्थान का नाम उजागर किया है, राजस्थान के नाम को जो है वहाँ तक लेके गए हैं। तो सब बाबजी की कृपा है। और यहाँ का इतिहास भी सुनाऊँ मैं आपको, तो यहाँ इस आश्रम में जब से मैं बालपन से अध्ययन कर रहा हूँ तब से अनेकों अध्यापक आए हैं और अनेकों अध्यापकों ने एक दो वर्ष इस आश्रम में निवास किया, रह करके सच्ची श्रद्धा से, ईमानदारी से पढ़ाया। और जिन लोगों ने बाबजी पर विश्वास किया, आस्था रखी, ऐसे 50-60 अध्यापक टीचर्स मैं जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट में जॉब लगी, ये सब बाबजी की ही कृपा है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपकी सुनता है और आपके मनोरथ को पूर्ण करता है। तो उसमें से हमारे आदरणीय गणपत जी, आप भी जो है बहुत वर्षों तक आपने अध्ययन कराया और अभी वर्तमान में आप जो है सरकारी में जो है अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सुंदर प्रकार से केमिस्ट्री इत्यादि का अध्ययन कराते हैं। तो बाबूजी की कृपा बरसती हैं, बस लेने वाला चाहिए। परमात्मा तो क्या करता है, बरसा

करता है। अब आपके पास कितना सामर्थ्य है, लोटा लेके जाओगे तो महाराज लोटा भरोगे, थाली लेके जाओगे थाली, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। तो आइए हम लोग सुनते हैं अशोक जी चौहान को। दीप नारायण भगवान की जय हो।

दीप नारायण भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलख

0: या विच
1: श्री दीप नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव की जय। 11 times residing the Om.
2: Diese Netzer Omlas.
1: There are different centers.
2: Vannak különböző központok.

0: सतगुरु भगवान की
1: जय हो।
2: अच्छा बोल दे,
1: हाँ बोल दे मामा, एक आध बोल दे, फिर से आप
3: बताओ थे,
1: बोल दे,
0: बोल ले,
3: नहीं, हाँ बोल ले,
1: ठीक है।

0: नींद का जड़ा जाए
1: नींद हो
2: गम कर
1: मुझे
0: फिर और काटी है महाराज काटी है
1: अरे ओ माय
0: गॉड यू वॉक
3: चलो आवाज बोलो साहब।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी।

गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम् ओम शांति शांति शांति। अलकपुरी जी महादेव की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की, पूज्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की, सत्य सनातन भारत माता की। ब्लेसिड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स भक्तास डियर वंस राउंड द वर्ल्ड दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम होली लैंड भारत जार्डन राजस्थान पाली फ्रॉम द गुरुकुल। गुरुकुल मीन्स दैट एजुकेशन सेंटर वेयर द मास्टर द गुरुदेव इज गिविंग द नॉलेज। द स्कूल्स द कॉलेज एजुकेशन सेंटर्स ऑल बिगेन विद द ऋषिज। There was no schools in the whole world. It was only taught by the great rishis. And the first university in the world, where was it? Pehli university kahan thi sansar mein? Takshila. तक्षशिला कौन से देश में था? भारत में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इन इंडिया तक्षशिला। मैनी मैनी थिंग्स सो ओके लेट्स गो फर्दर। इन अवर गुरुकुल ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल वेयर द Students are studying from the nursery school, primary school, middle school, high school and college. In this area of Rajasthan, we have one project and many of you know, it's called Gyanputra.

हम आवर गुरुकुल एडॉप्ट्स द स्टूडेंट्स द चिल्ड्रन एज ए मानस पुत्र. एक तो मानस पुत्र होता है जिसको हम हमारी पुत्र के समान आदर करते हैं, प्यार करते हैं, समझते हैं. और वो ही चाहे आप मानस पुत्र कहो या ज्ञान पुत्र, क्योंकि फादर का, बाप का, माँ बाप का फर्ज होता है कि संतान को शिक्षा दें. बिकॉज द पेरेंट्स आर दे हु गिव्स द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन. नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन द टाइम द स्कूल बिगिन्स फ्रॉम 1st of July. So now our students are coming. But dear ones, you can see many of our Gyanputra, our students in our hostel still coming, and you see them in the Pitambar dress, Pitambar like gold, and Bhagavan Krishna used to have Pitambar. And this Pitambar is a color of the flame of the fire. So the Vidyarthi, they are studying, they should not do any wrong things. They are sitting in the fire in this dress, and this dress will not let come in your body and in your mind negative things. So this is a very ancient uniform for the brahmachari, yani vidyarthi, yani student. They have nothing to do except study. Those who studies, their fruits of their study will come in the future. And the future you will be so happy that you had an education which is a cultural traditions, ethics, morals and spiritual education. Indian culture, Indian tradition, Indian education from the ancient time was leading the world into the peace and divine. In the Indian education system, there is no aggressivities. They were not aggressive. So, in our Gurukul, we have a different education, not this modern education where they are only want to work and earn money, earn money, earn money. It is very funny to earn that only money. So, हमें तो ज्ञानार्जन करना है, पैसे की बात नहीं करनी है. हम पढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के अंदर. क्योंकि वो पैसे जो हैं, जो तुम सोचते हो, वो तुम्हारी विद्या के अंदर है. और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है, ये इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है. और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए, घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए, लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है. इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, बड़ा होकर के मेरे माता पिता, मेरी समाज और मेरा गांव, मेरा देश
और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा। बस तो लक्ष्मी पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए। अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो। ले ओ, एक महीना रहा 15 लाख, अपाओ तो थैला में उठी जाए कोई नहीं, 15 लाख रुपए उठा सकते हैं हम? अरे बहुत, तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है 15 करोड़, तो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो, लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहां हो जाएगा जमा, और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ, और वो पैसे जो है जो हमारे मस्तिष्क में है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है, कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो मालो माल है। सो द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर, द लैंग्वेज, द फर्स्ट लैंग्वेज व्हाट वी कॉल इज संस्कृति, संस्कृत। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड, मे बी 2-3 नॉट एवरीवेयर देयर इज द वर्ड्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज इन मैनी मैनी मैनी मैनी कंट्रीज। एंड ऑल्सो द कल्चर गोज फ्रॉम द भारत। All these many countries like Europe and there, they were all under the glaciers. They were living here near the Himalaya and near this Indo Valley. Of course, Australia was different and there, but in Australia is also where the South Indians, which we call the Aborigines. So, Aborigines ke andar वो उनके अंदर वो मिलता है जैन्स कि वो भारत का है, साउथ इंडिया का है। तो कहा है कि सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है तिब्बत में, और तिब्बत का अर्थ वो है कि जो जहां पर वेयर देयर इज माउंट कैलाश, और कैलाश के अंदर कौन सा मनुष्य पहला पैदा हुआ? स्वयंभू शिव। आगे वापस वहीं के नहीं, इसलिए हमारा देश इतना है कि उसको कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं। सब कुछ है अपने देश के अंदर में, और ये देश जो है इनका एक एक कण कण मिट्टी के अंदर में देवी देवताओं का वास है। चंदन है मेरे देश की मिट्टी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला है देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है। फिर क्या काम है, वहां तो आराम है, वहां आराम नहीं है। सो मैं अब आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इन अवर गुरुकुल अवर ज्ञानपुत्र इज हियर, दे आर कमिंग and we are welcoming them, and you are most welcome to help for the education. Thank you very much. And now I would like to give the words to our Mahamandaleshwar Sri Gyaneshwar Puri Ji Maharaj. Gyaneshwar Puri, Gyanesh Nami, Gyan aur Ishwar do mil jaye to kya chahiye, और ज्ञान नहीं और ईश्वर मिल जाए तो भी वो डब के क्यों आया तो कौन है? तो ईश्वर और ज्ञान दोनों का मिलन होता है तब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार ही हो गया, समझिए। तो नाउ
इन

Good. Thank you. Thank you, and me hunyo. Thank you. And you see the all Vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now, only the हमारे गुरुकुल के बच्चे जो हैं turn to the camera side. मुंह देखो दूसरे लोग नहीं. Only the Vidyarthi turn to the don't go close to the chela नहीं दिखेगा बेटा. तू इधर जा खड़ा हो जा. बस बेटा यहीं खड़े होके दे या नजदीक आ जाए बस. ओके वी विल सी व्हेन इज देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव की हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की ओम शांति शांति शांति ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिव उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीर्माम् ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं वर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीर्माम् ओम शांति शांति शांति. बस अब मेरी तरफ झुक आज देख लो इस कैमरा में देखो दिख रहे हो तुम लोग. तुम दिख रहे हो पीछे ये खड़े हो बैठ जाओ. बस थैंक यू. सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर. Now is the time for prasad. दिख रहे हैं सभी के नहीं दिख रहे. Yes, time for prasad. ठीक है तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार और मैं आऊँगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के वजह से.